0: was February 25th in 2020 when Delhi witnessed the worst riots in the national capital in decades. A wave of arson, violence and unrest left more than 50 dead, including IB officer Ankit Sharma, during clashes in northeast Delhi over the implementation of the CAA. After more than 6 years, a Delhi court has convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others in the Ankit Sharma murder case. Hussain was found guilty under provisions related to murder, promoting enmity between different religious groups, rioting and assault or criminal force used to dishonour a person. Ankit's body was found in a drain with 51 stab wounds. His brother, while speaking to India Today, demanded strictest punishment for those responsible for his murder.
1: मैम सिर्फ यही मांग है, सभी की मांग है, हमारी भी यही मांग है कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले और एक सबक पेश करना चाहिए सरकार को, कोर्ट को, कि कोई भी आगे से कोई किसी के साथ, जैसे हमने अपना भाई खोया, हमारा परिवार इस तरीके से बर्बाद हुआ, किसी और का परिवार या किसी और का बेटा ऐसे ना मरे।
0: Back in 2020, India Today's Pooja Shali visited Ankit Sharma's house. His mother was inconsolable.
2: मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को, खींच कर ले गए तुम्हारे लड़के को, खींच कर ले गए, खींच कर ले गए, तीन लाश मिली है नाले में।
0: Tahir Hussain's house was among the locations from where the violence was carried out. Stones and crude bombs were recovered from his residence. But Tahir continues to maintain that he is innocent.
3: Tahir ji, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। Tahir ji, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए।
0: His conviction sparked a massive political row, with the BJP coming down heavily on AAP supremo Arvind Kejriwal, accusing him of turning a blind eye to anti-Hindu riots for Muslim votes.
4: ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसमें हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे?
5: केजरीवाल गैंग के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। ताहिर हुसैन को बचाने के लिए संजय सिंह ने उस दौरान बार बार मीडिया में बयान दिए, देश के सारे मीडिया चैनलों में बयान है संजय सिंह के 27 फरवरी 28 फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, पिछली सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी, हत्यारों के साथ खड़ी थी।
0: The AAP hit back at the BJP. In a post on X, Kejriwal said Tahir was expelled from the party long ago and later joined AIMIM, which he called a BJP-linked group. The AAP, which was in power during the riots, renewed its attacks on the BJP.
6: अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम।
7: अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दिल्ली के फसाद सिर्फ ताहिर हुसैन ने किया हो, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो फसादी थे उनको बचाने की कोशिश हो रही है और इस पूरे दंगे को मुसलमानों पर लादा जा रहा है।
0: Will Tahir Hussain's conviction bring closure to Ankit Sharma's family? With Pooja Shali and Shishant Mehra, Bureau Report, India Today.
8: And joining me now on the politics around this subject after the court order is Delhi's Law Minister, Law and Labour Minister, Kapil Mishra. Kapil Mishra ji, स्वागत है आपका। आपने ताहिर हुसैन को बस कहा कि वो एक एक्टर है, इसका डायरेक्टर, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे और बड़े लोग हैं, तो कौन है इसका डायरेक्टर आपके मुताबिक, कौन है वो लोग जो इस साजिश के पीछे थे?
5: देखिए गौरव जी, दिल्ली के जो दंगे थे वो एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए थे। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका फैसला कल आया है न्यायालय के माध्यम से। इसमें 24 साल के नौजवान मासूम निरपराध और निःशस्त्र आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को ताहिर हुसैन के घर में घसीट के ले जाया गया और 51 बार चाकुओं से उनके शरीर को गोदा गया और उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया। दो दिन के बाद नाले से वो शव जब निकाला गया हाथों में रस्सी बांधकर, तो उसका दृश्य दिल्ली वाले देश वाले कभी भूल नहीं सकते हैं। उसका एक फैसला आया है, लेकिन दिल्ली के जो दंगे हैं उसके बारे में अगर हम डिटेल में बाकी सभी केसेस को देखें, एविडेंसेस को देखें, तो पूरे उस क्षेत्र को चारों तरफ से बंद करके, सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की एक योजना बनाई गई थी और उस योजना को लागू भी किया गया। हथियार इकट्ठे किए गए, छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, गुलेल ऐसी लगाई गई जिनका निशाना हिंदुओं के मंदिर की तरफ था और उस सबके वीडियो फुटेज वो सारे देश के हर मीडिया के पास है, सब लोगों के पास है, ये सबने देखा हुआ है, ये कोई आरोप नहीं है, ये तथ्य है। तो इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी में एक मामले में जिसमें निरपराध आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर हुआ उसमें फैसला आया है कि ताहिर हुसैन ने यह हत्या की। यह लगभग सबको मालूम था, केवल न्यायालय की, क्योंकि न्याय की अपनी गति होती है, उस गति से यह फैसला आया है। लेकिन इसके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, इसके जो सपोर्टर हैं, और गौरव जी एक इकोसिस्टम है जिसमें वकील हैं, कुछ पत्रकार हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं जो मिलकर हमेशा आतंकियों को बचाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है वो इकोसिस्टम के लोग न्याय की अदालत से तो बच जाएं, लेकिन ईश्वर की अदालत में भी उनका न्याय होगा और निश्चित उनको सजा मिलेगी।
8: नहीं, आप एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक बड़े इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या है ये इकोसिस्टम? कौन है इस इकोसिस्टम में? क्या क्या नेता चलाते हैं इस इकोसिस्टम को? क्या है ये इकोसिस्टम?
5: देखिए, मैं आपको तीन चार जो घटनाएं हुई उनके बारे में बताता हूं। ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा जी का जब मर्डर किया, उसके बाद जब ताहिर हुसैन भागा तो टीवी पे सबसे पहले कौन आया ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताने के लिए? टीवी पे सबसे पहले आम आदमी पार्टी का नेता संजय सिंह, जिन्होंने आकर यह कहा कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है। एक बार नहीं, बार बार आकर संजय सिंह ने यह बयान दिया कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है। और संजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आपके चैनल पर भी है, 27 फरवरी, 28 फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक के वीडियो अगर आप निकालेंगे तो संजय सिंह ने टीवी पर आकर यह बात कही कि मैं तो ताहिर हुसैन के लगातार संपर्क में था, ताहिर हुसैन तो मुझसे मदद मांग रहा था, ताहिर हुसैन तो खुद ही पीड़ित है, उसको तो फंसाया जा रहा है। आज जबकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं गौरव जी, क्या जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी के ऊपर चाकुओं से वार कर रहा था तब क्या संजय सिंह उसके संपर्क में थे? क्योंकि संजय सिंह के खुद के बयान ये बताते हैं कि उन तीनों दिन में ताहिर हुसैन और संजय सिंह एक दूसरे के साथ फोन पर बात कर रहे थे। क्या मजबूरी थी कि संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दी और बार बार आकर उसको बेगुनाह बताने का काम किया? क्या मजबूरी है कि आज भी आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहा है? आम आदमी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चाहे वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हो या उत्तराखंड के बालक दिलबर नेगी की हत्या हो, ऐसे किसी भी हिंदू पीड़ित के लिए दो शब्द उस वक्त के मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, कोई किसी के घर के दरवाजे तक पहुंच के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। बल्कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि हम सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, और यही वो लोग हैं राजनीति के और ऐसे ही कुछ लोग पत्रकारिता के और वकालत के भी हैं जिन्होंने बार बार दंगाइयों को बचाने की कोशिश की है और एक झूठा नैरेटिव बनाने का पाप किया है।
8: यह आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कुछ राजनेताओं पर, एक पॉलिटिकल पार्टी पर, कुछ वकीलों और पत्रकारों पर। आप एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिन्होंने दंगाइयों की आपके मुताबिक रक्षा की, लेकिन कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ठीक दफा 302 ये हत्या की हत्या है, 365 ये अपहरण है, 147, 148, 149 सेक्शंस 147, 148, 149, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो बड़ी साजिश की आप बात कर रहे हैं, सेक्शन 120B उस समय आईपीसी की अगर बात करें, इन धाराओं में तो उन्हें दोषी नहीं पाया गया है, तो फिर आप क्या इस मुद्दे पर अब राजनीति कर रहे हैं सर?
5: इसीलिए गौरव जी मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये एक पर्टिकुलर केस का फैसला आया है, सीरीज ऑफ केसेस हैं और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है जिसमें उमर खालिद जेल के अंदर है, जिसको बचाने की कोशिश यही इकोसिस्टम कर रहा है जो कल तक ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये जो घटनाक्रम है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है कि अंकित शर्मा जी का मर्डर हो गया एक आइसोलेटेड घटना है या दिलबर नेगी जी का मर्डर हो गया एक आइसोलेटेड घटना है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत दिसंबर में ये शुरू हुए जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने बसों को आग लगाई गई, सीएनजी सिलेंडर लगी हुई बसों को, जब सीमापुरी में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ ने पथराव किया और जब दरियागंज में थाना जलाया गया। यह दिसंबर से शुरू हुई ये घटनाएं सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर शुरू हुई थी और उनकी परिणति फिर फरवरी में आकर हुई जब इस प्रकार के तीन दिन जब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट भारत में हो रही थी उस वक्त को टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ये किया गया, नरसंहार करने की साजिश थी। ताहिर हुसैन का अपना बयान जो कोर्ट में है उसमें यह इशारा किया गया है कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराने और लोगों को पलायन हिंदू समाज को पलायन कराने के उद्देश्य से उन्होंने पत्थर बम और गुलेलें अपने घर में इकट्ठा करके रखी थी। तो ये सारी चीजें आज एविडेंस का पार्ट हैं, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये बयान ये वीडियो फुटेज सब ऑन रिकॉर्ड हैं और ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि दिल्ली के दंगे आइसोलेटेड घटना नहीं है, सुनियोजित तरीके से उस क्षेत्र में हिंदुओं को पहले रास्ता बंद करो और उसके बाद नरसंहार करो यही योजना के साथ। और इसीलिए जो भी लोग रास्ता बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे वो सभी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस अपराध में शामिल हैं।
8: ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर जिन लोगों ने अनर्गल बातें की, मिथ्या फैलाई इस देश में, वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें घायल हैं। दोज हु स्प्रेड दैट फेक नैरेटिव अराउंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बट टेल मी दिस सर, आपने थानों को आग लगाने की बात की, एक तस्वीर जो सबके मन में है वो पुलिस वाले भाग रहे हैं और भीड़ उनको दौड़ा दौड़ा के पथराव कर रही है, इतने संगीन अगर कार्रवाई हुई और उसके बावजूद कई लोग अक्विट क्यों हो रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाता कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया? वो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं, एक सोची समझी सुनियोजित साजिश की आप बात कर रहे हैं, वो अदालत में प्रूफ करने में नाकाम रही है पुलिस?
5: देखिए गौरव जी, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं मैं उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। इसमें अमित शर्मा जी जो अधिकारी थे डीसीपी, उनको पहले उस तंबू के अंदर बुलाया जाता है जहां पे सीएए एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है। उससे पहले सुनियोजित तरीके से एक भीड़ निकलती है जो सारे सीसीटीवी तोड़ते हुए चली जाती है। उन्हीं बस्तियों से वो भीड़ निकलती है जिन बस्तियों से ये सड़क रोकने वाले लोग निकले थे और जिन बस्तियों से बाद में दंगाई निकले थे, उन्हीं बस्तियों से एक भीड़ निकलती है जो सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है। उसके बाद उनको बुर्काधारी महिलाओं के एक समूह के द्वारा टेंट के अंदर बुलाया जाता है और जब वो चारों बिल्कुल टेंट के अंदर होते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, तब अचानक से एक बड़ी भीड़ आती है और पथराव करके मारना शुरू करती है। उसमें अमित शर्मा जी एक अस्पताल के ऊपर जाकर भागते हैं, रोड क्रॉस करके अस्पताल के अंदर जाते हैं, अस्पताल के अंदर घुस के आग लगाने की कोशिश होती है और अस्पताल के बगल वाले पेट्रोल पंप में आग लगा दी जाती है। इसी घटनाक्रम में अमित शर्मा जी सड़क पार करते हैं लेकिन कांस्टेबल रतनलाल जी उस सड़क में गिर जाते हैं और वो ही भीड़ उनको पत्थरों से मार मार के उनकी हत्या वहां पर करती है, कांस्टेबल रतनलाल जी की। अब आपने कहा कि न्यायालय में क्या हो रहा है और कोर्ट में क्या हो रहा है और कुछ मामलों में लोग छूट रहे हैं, जिन मामलों में लोग बच भी रहे हैं वहां पर स्थिति यही है क्योंकि इन्होंने पहले बहुत ही प्लान तरीके से पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े, ये सुनिश्चित किया कि इन्हीं के लोगों के अलावा और कोई भी व्यक्ति वहां पे बचा ही ना हो, जिससे कि गवाही देने के लिए भी कौन खड़ा होगा जब उस इलाके में पहले ही आगजनी किए जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। लार्जर कॉन्स्पिरेसी, सोची समझी साजिश, सफेदपोश लोग जो कानून के लूपहोल को भी समझते हैं और जो समझते हैं कि अपराध हो जाने के बाद कैसे 16 साल 17 साल के बच्चों से पथराव कराना है कि बाद में उनको नाबालिग बोल के जल्दी से उनकी बेल करा ली जाए। दरियागंज थाने में पथराव और आगजनी के मामले में एग्जैक्टली यही किया गया। इस प्रकार का एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें पत्थर कौन चलाएगा, आग कौन लगाएगा, उसको बचाने के लिए वकील कहां से आएगा, उसके पक्ष में टीवी में और अखबारों में आर्टिकल कौन लिखेगा और उसको उसके साथ देने के लिए कौन से राजनेता की गाड़ी उनके दरवाजे पे आके खड़ी होगी, ऐसा पूरा इकोसिस्टम इस देश में काम करता है। और यह कोई मैं ऐसा अनजाना तथ्य नहीं बोल रहा जो किसी को मालूम ना हो, सोची समझी जानी पहचानी यह बात है और उसी सिस्टम के भरोसे आज ये लोग मानते हैं कि ये उमर खालिद को बचा लेंगे या किसी ताहिर हुसैन को बचा लेंगे।
8: आप दिल्ली के कानून मंत्री हैं, अब देखना यह होगा कि दोषियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ कितने पुख्ता सबूत न्यायालय में लाए जाते हैं कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और भारत को जलाने की साजिश कोई आगे से ना कर पाए। आप मेरे साथ जुड़े, कपिल मिश्रा, दिल्ली लॉ मिनिस्टर, मेनी थैंक्स। आई क्विकली वांट टू ब्रिंग इनटू दिस कॉन्वर्सेशन यशोवर्धन आजाद, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो। मिस्टर आजाद, You had seen, you and I saw what happened to our Delhi in 2020. The manner in which police stations were targeted, the manner in which a brave young police officer and his team were chased, hunted. Your reading of the Delhi verdict that Tahir Hussain was part of an unlawful assembly and with animus against Hindus, that murder of Ankit Sharma was a direct consequence of a common object. Your reading of the verdict, sir.
9: Well, there are two things.

0: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: नहीं, मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी. एंड यहीं पे मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11, 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
2: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advance and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी. तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
2: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advance by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.
3: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
4: CP Plus, ऊपर वाला सब देख रहा है.

पंचायत आज तक इस विशेष कॉन्क्लेव में उपस्थित वाइस चेयरमैन इंडिया टुडे ग्रुप सामान्य कलीपुरी जी, न्यूज डायरेक्टर आज तक श्री सुप्रिय प्रसाद जी, आज तक ग्रुप से जुड़े हुए सभी उनके संपादकगण और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज तक को पंचायत उत्तर प्रदेश के इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए इस विशेष पंचायत को उन्होंने यहां पर रखा है और पहले ही देश की इस सबसे बड़े ग्रुप ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि बीजेपी यूपी में फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। उनकी इस घोषणा के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में एक लोकप्रिय मीडिया ग्रुप होने के नाते आम जन की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है। उन्होंने ये कहकर के आम जन की आवाज को ही मोहर लगाने का काम किया है। मित्रों, आज हम यहां पे लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायत उत्तर प्रदेश के स्पेशल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हैं। आप में से अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। अगर वह किसी राजनीति की किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं है, उत्तर प्रदेश में वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जनपद से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ हो, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को आप सब ने पिछले एक दशक में देखा है। बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश की क्या आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है नहीं हुई है, इन सभी बातों को अनुभव भी किया होगा। मुझे एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के पहले एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय मैं उन मुद्दों से जूझता था। उन मुद्दों के लिए हर स्तर पर उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता था और कभी कभी निराशा भी होती थी कि लगता है ये सब नियति बन चुकी है, बीमारी से मरना, माफिया के सामने लोगों का नतमस्तक होना, बिजली के लिए और सामान्य जन सुविधाओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखना, भूख से मौत, युवाओं के सामने पहचान का संकट, किसान के सामने आत्महत्या जैसे कदम उनके द्वारा उठाए जाने, ये सभी चीजों को हम बहुत नजदीक से देखते थे और उस समय अंतःकरण में पीड़ा होती थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है क्या।
लेकिन जब पिछले 9 वर्ष के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता का संचालन करने का अवसर हमारी पार्टी ने दिया और मैं इसके परिणाम को देखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ में दिल्ली से या लखनऊ गोरखपुर से कोई टीम अलग से आई हो। मैं दिल्ली में सांसद था जब मुझे यहां भेजा गया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति दिल्ली से नहीं आया। मैं गोरखपुर से सांसद था और गोरखपुर में लगातार 5 बार से सांसद होने के साथ साथ वहां से हर एक उस पर जुड़ा था, वहां से भी एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। जो लोग लखनऊ में मौजूद थे और जो टीम मुझे मिली, मैंने उसी को लेकर के उनकी मानसिकता को बदलने का काम करने का प्रयास किया और जो परिणाम सामने आए हैं वे सब आपके सामने हैं। और मैं केवल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यही काम, यही घोषणा जो मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूं, जो रिजल्ट आए हैं, अगर यह बात मैं आज से 9 वर्ष पहले मैं बोलता या 9.25 वर्ष पहले जो महानुभाव उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे वे लोग उस प्रकार की घोषणा यूपी के बारे में करते तो लोग जरूर हंस देते, तब उसके लिए ताली नहीं बजाते, उस समय हंसते। हमने इन 9 वर्षों में यूपी को कहां पहुंचाया है और मैं मानता हूं कि यूपी को इन 9 वर्षों में हम लोगों ने पहचान के संकट से उभारा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स की उपस्थिति 3 गुना बढ़ी है और उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, इन 9 वर्षों में देश की टॉप 3 यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में नहीं हो सकते थे, लेकिन इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार आने के बाद वे जमीनी धरातल पर दिखाई दिए और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दोनों मिलकर के काम कर रहे थे लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते। क्या स्थिति थी यूपी के अंदर, यूपी का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, उसकी नौकरी पर सेंध लगती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी और अगर कभी नौकरी निकल भी गई, सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकला, उसने आवेदन भी किया तो उसकी योग्यता के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता था, और सेलेक्ट नहीं होता था क्योंकि नौकरी पर कुछ चंद जनपदों का कब्जा था, कुछ चंद लोगों का कब्जा था। सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। कितनी खराब स्थिति यूपी के अंदर थी कल्पना करिए। 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में कोई भी सभ्य परिवार और कोई भी क्षमतावान परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। अगर उसको भेजना होता था तो यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या किसी नातेदार रिश्तेदार के यहां भेज करके वहां से अपनी बेटी को पढ़ाता था। एक बेटी को जिसको माँ बाप का सानिध्य मिलना चाहिए बचपन में, वह हॉस्टल में रहने के लिए या फिर अपने नातेदार रिश्तेदार के यहां रहने के लिए मजबूर कर दी जा रही है। यह स्थिति 2017 के पहले थी। कैसे सत्ता के समानांतर माफिया की सरकारें चलती थी। कोई सुरक्षित नहीं था, न मीडिया सुरक्षित थी, न कॉमन मैन सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, न कोई बेटी सुरक्षित थी, न उद्यमी सुरक्षित था। व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं शाम को भी अपने परिवार का मुंह देख सकूं। परिवार का कोई सदस्य घर से सर्विस करने के लिए किसी काम के लिए बाहर निकलता था तो शाम वह ये प्रार्थना करके निकलता था कि ईश्वर मुझे शाम को अपने परिवार का मुंह देखने का अवसर मिले। उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह स्वयं सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। न सरकार की नीति थी और न नियत थी, अराजकता चरम पर थी। माफिया के सामने सरकारें नाक रगड़ती भी दिखाई देती थी और आज भी उनके पुराने संस्कार आप सुनते होंगे। जब वे बोलते हैं कि अगर सत्ता में कभी आ गए तो हम इसकी जांच कराएंगे कि माफिया मारे क्यों जा रहे हैं या माफिया को माफिया के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। यानी उनकी सहानुभूति आज भी यूपी के नागरिकों के लिए नहीं है, यूपी के कॉमन मैन के लिए नहीं है, यूपी के व्यापारी यूपी की बेटी के लिए नहीं है। उनके सहानुभूति आज भी उस माफिया के प्रति है, उनके गुर्गों के प्रति है जो या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उनकी सहानुभूति यूपी के नागरिकों के प्रति आज भी नहीं दिखती है। ये स्थिति यूपी के अंदर, आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेबल पाते होंगे अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेकर 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए। पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9 वर्षों से हमारी सरकार है। इन सभी को लेकर के रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में, संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे, आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वे प्रश्न, वे मुद्दे याद आ जाएंगे जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था। और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज DBT के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो
तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। अब उससे अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हाँ, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है, हम लोगों ने करके दिखाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें, हर वर्ष यही सीजन था, हर परिवार सशंकित रहता था, पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत जीरो जीरो पे पहुंच चुकी है। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, भूख से मौतें अलग से होती थी, आज सेचुरेशन 100% उन्हें हम सेचुरेट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए, आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था, लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था, अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी, क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था, लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे, न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग, जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है,
आप याद कर रहे होंगे इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आप याद करिए सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, योजना आयोग ने इसको 1970 के दशक के प्रारंभ में, यानी तब हमारा मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब इसको अप्रूव किया। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन वो योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। वो योजना पूरी तब हुई जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, हमारी सरकार आई, हमने उसको पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को हम अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड में आज प्रभावी हो चुकी है, लाखों हेक्टेयर लैंड को पेयजल उपलब्ध, वहां पे लैंड को पानी मिल रहा, खेत को पानी मिल रहा है और लोगों के पेयजल की सुविधा उसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं महोबा में गया था, जब योजना नहीं थी तब मैं लोगों से बात करता था कि भाई क्या स्थिति रहेगी आपकी और आपकी खेत क्यों आप प्लान करते हैं, क्या स्थिति होगी आपको अगर हम इसको पूरा करेंगे। लोगों में तब तक विश्वास नहीं था और आज मैं कह सकता हूं प्रति बीघा वहां के किसानों को 5,000 रुपये मिलता था वर्ष में, और आज प्रति बीघा 50,000 रुपये उसी महोबा जनपद में वहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है अर्जुन सहायक परियोजना पूर्ण होने पर। आप बाण सागर परियोजना के परिणाम देखिए, मिर्जापुर और बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, दशकों से लंबित परियोजनाएं थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वह कार्य पूरा होने के बाद 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए और बिजली फ्री है, यानी 16 लाख ट्यूबवेल प्राइवेट ट्यूबवेल थे उनको भी हमने फ्री में बिजली कर दी है। हमने कहा पैसा हम लोग स्वयं भरेंगे, लेकिन आप अच्छी फसल करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूपी का किसान अच्छा कर रहा है। अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने अब तक, यानी जिस राज्य में 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें बेच दी गई औने पौने दाम पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी थी जिस चीनी मिल कि जमीन की कीमत ही 100 करोड़ से ऊपर की थी, उस चीनी मिल को मात्र 3 करोड़ में बेचा गया था, मात्र 3 करोड़ में। 2017 में जब सरकार बनी हमारी, तब उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था और आज पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ये सीधे किसानों के खाते में पैसा गया है। 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का दाम हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं और आज के दिन पे 122 चीनी मिलों का संचालन यूपी कर रहा है। इन चीनी मिलों में 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 4 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करा रही, यानी 10 वर्ष में और 4 दिन में कोई अंतर नहीं है क्या, यानी 4 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। शेष जो चीनी मिलें हैं उन चीनी मिलों पर भी इस बात का दबाव है कि वे भी प्रयास करें कि कम से कम 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हो जाए और सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है कि हम अन्नदाता किसान को उसका दाम समय पर उपलब्ध करवाएं। आज किसान में के दाम को किसी भी उपज को बिचौलियों के माध्यम से नहीं, सरकार सीधे उनसे खरीदती है। अगर मार्केट में अच्छा दाम है किसान स्वतंत्र है, मार्केट में अपने उपज को बेच सकता है, लेकिन अगर मार्केट में दाम नहीं है तो
तो एमएसपी में लागत का डेढ़ गुना दाम पर सरकार उससे खरीदेगी और सरकार फिर उसको अपने स्तर पर आगे मार्केट तक पहुंचाने का काम करेगी। अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना भी है, सॉयल हेल्थ कार्ड की भी योजना है, आज किसान के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी खेती में जो विकास दर बढ़ी है उस विकास दर के पीछे ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो उसको फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है उसका परिणाम आज यहां देखने को मिल रहा है। एमएसएमई में जो दम तोड़ चुका था, जहां कारीगर प्लान कर चुका था, वह फिर से आगे बढ़ा है। आज के दिन पे यूपी देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट को संचालित कर रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो चुके हैं। 96 लाख, हर एक यूनिट को सरकार 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी कवर उपलब्ध करवा रही है और 3.25 करोड़ युवा इसके साथ रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। यानी जो पहले से मौजूद था, हां इसके लिए हमें उनको टेक्नोलॉजी देनी पड़ी, हमें उनको डिजाइन देनी पड़ी, पैकेजिंग के साथ जोड़ना पड़ा, मार्केट से लिंक करना पड़ा और सरकार ने उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बना करके उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं, तब यूपी इस दिशा में आगे बढ़ा। मित्रों, यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है। पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य है टॉप 3 में, यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं देश के अंदर कोई भी स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली है। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है, हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। और यूपी में स्कीम सफल होने का मतलब स्कीम अपने आप में देश के अंदर सफल हो गई, दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। किसी भी योजना में आप देखेंगे आज गरीब को मकान मिला है, लगातार दिए जा रहे हैं, हर घर में शौचालय बन गए हैं, हर गरीब के पास अपनी वे सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जिसके लिए वह दशकों से लालायित था, आज उसको प्राप्त हुआ है। अब कोई मेरे पास शिकायत लेके नहीं आता कि साहब अनाज नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, इसकी शिकायत लेके नहीं आता है। मुझे याद है 17 में मैं आया था, सर्वाधिक शिकायत मेरे पास आती थी, लेकिन सरकार आते ही मेरे लिए चिंता का भी सबक था क्योंकि मैं आंदोलन भी करता था इस मुद्दे को लेकर कि गरीबों को राशन मिलना चाहिए। भूख से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भूख से मौतें होती थी, तब मेरे लिए चिंता का विषय होता था, हम लड़ते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, हम लोग आए, हमने पॉस मशीन लगाई। स्वाभाविक रूप से फेयर प्राइस शॉप के संचालक इसका विरोध करते, उन्होंने विरोध किया भी। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भी देखो पहले क्या होता था जाने दीजिए, हम आगे से सुधारना चाहते हैं, आप लोग योगदान दीजिए। उन्होंने कहा साहब फिर हमारा कैसे चलेगा। हमने कभी कहा गरीब का हक पे डकैती डाल करके तुम लोग अपनी व्यवस्था का संचालन करना चाहते, तुम्हें मांग करने गवर्नमेंट से मांग करो कि आपके इंसेंटिव को बढ़ाएं, गवर्नमेंट हम इंसेंटिव को आपका बढ़ाएंगे लेकिन गरीब के हक में डकैती नहीं डालने देंगे।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 16 करोड़ लोगों को आज के दिन पे हम यूपी के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं। ई पॉस मशीन हमारे यहां पूरे स्क्रीन में आता है, 80,000 फेयर प्राइस शॉप है, सबका आता है। किसी गांव में अगर फेयर प्राइस शॉप में थोड़ी घटतोली हुई, वो हमें अलर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारी टीम जाती है, छापेमारी करती है, उसी समय उसको देखती है, कार्रवाई कर देती है। किसी की हिम्मत नहीं होती। हमने उनके कमीशन को बढ़ाया है, आने वाले समय में फिर प्रस्ताव आएगा, हम इस चीज को और आगे करेंगे। लेकिन आज हम मॉडल शॉप बना रहे हैं। आज गरीब को राशन मिल रहा है, आज किसी बेटी और किसी बहन को अपनी गरिमा को छुपाने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना होता, उसके घर में शौचालय है, कोई समस्या नहीं, पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है, यूपी के सभी 75 जनपदों में समान रूप से हम बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15,000 से 16,000 मेगावाट पीक आवर में होती थी, और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 33,000 से 35,000 मेगावाट। ये यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है, यानी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने बनाई है। इसके माध्यम से जो निवेश हुआ है, मुझे याद है 2017 में जब सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद मेरे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापन और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा था हम कोई इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आपका टारगेट क्या है, उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा पहले नाम बदल दो भाई, मुझे देखे। मैंने कहा भी देखो ग्लोबल शब्द आपने रखा है और टारगेट है 20,000 करोड़ का, तो 20,000 करोड़ तो एक जिले का होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट रखो, ये ग्लोबल नहीं, ग्लोबल के लिए आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा। मैंने कहा 6 महीने हुए हैं ना, अभी कुछ तो बदला होगा। उन्होंने कहा साहब समय लगेगा, अभी विश्वास बहाल करने में समय लगेगा, हम जिससे भी बात करते हैं वो हाँ तो कहता है लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं होता है। मैंने कहा मेहनत करो, पॉलिसीज बनाओ, इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होगा, अनावश्यक विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा एक्सपर्ट की राय लीजिए, पॉलिसी तैयार करो, पिक एंड चूज नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज है, 50,00,000 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, 50,00,000। जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50,00,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15,00,000 करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है, 7,50,000 करोड़ हमारे पास तैयार है, उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये है नया यूपी, जिस यूपी में और इसके माध्यम से 65,00,000 नौजवानों को हमने यूपी के अंदर ही नौकरी दी है। ये सभी कार्यक्रम आज यूपी के अंदर चल रहे हैं। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे, लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में, हम कहते थे भाई देखो सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई, जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए
एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी इस एयरपोर्ट में हमारे पास जो लैंड है वह है लगभग 14,000 एकड़ लैंड। भारत के अंदर किसी एयरपोर्ट के पास इतनी लैंड नहीं है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, और ये सभी एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आएंगे और बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त होगी। 5 नए एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। अब चित्रकूट में भी एयरपोर्ट है, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट होगा, आज आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट है, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, मुरादाबाद में एयरपोर्ट, जहां लोग कल्पना नहीं करते थे, सोनभद्र में एयरपोर्ट। यानी जिन क्षेत्रों में कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था वहां भी एयरपोर्ट है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। मुझे याद है 2017 में इलेक्शन कैंपेन के बाद मैं और एक केंद्रीय मंत्री मेरठ में थे। हम लोग मेरठ में थे तो मुझे गाजियाबाद में भी एक सभा करनी थी, तो मैंने गाड़ी पकड़ी, हम हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने वहां से मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं तो दिल्ली चला गया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलिए चल लेते हैं, दिल्ली चलना है। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं निकलूंगा नहीं जब तक मेरे लिए सुरक्षा नहीं आएगी। मैं वहां से गया गाजियाबाद, गाजियाबाद में सभा करके फिर मैं दिल्ली गया। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ, उन्होंने कहा मैं तो अभी मेरठ में हूँ। मैंने कहा क्यों, कहा मेरी सुरक्षा पहुंच रही है। मैंने कहा मैं तब से दिल्ली पहुंच चुका हूँ, 3 घंटे लगते थे मेरठ से दिल्ली पहुंचने में, आज मात्र 40 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, रैपिड रेल बन चुकी है। देश की पहली इनलैंड वाटर वे दिल्ली हल्दिया के बीच में, ये यूपी के आपके वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित हो चुकी है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है, 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। कैसे डूबो रहे थे ये सब, इस सिफाई खानदान कैसे यूपी को तबाह कर रहा था, उसका नमूना हम यहां पर बैठे, इसके ठीक पीछे एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, उसको कहते हैं JPNIC, भारत के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था, जिस महापुरुष के नाम पर हुआ था, ऐसे सरदेव जयप्रकाश जी के नाम पर वह सेंटर बनाया है, इन समाजवादियों ने बनाने का प्रयास किया था। उसकी DPR थी 200 करोड़, 864 करोड़ खर्च हो गए, अभी भी अधूरा। कहां चला गया ये पैसा, यानी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 864 करोड़ खर्च हो गए तब भी अधूरा है। आप यहां आए होंगे, इसके बगल में एक नदी पड़ती है आदि गंगा के रूप में, मां गोमती है, गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर इसका जो कुल PPR बना था वह बना था 167 करोड़ का, खर्च हो गए 1400 करोड़ और कार्य अधूरा है। यानी कोई अप्रूवल नहीं, खजाना लुटवाया जा रहा था। एक तरफ गरीब भूख से मर रहा था, गरीब बीमारी से मर रहा था, और दूसरी तरफ खजाने को कैसे लुटवाया जा रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 2016 दिसंबर में तत्कालीन सीएम ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद 15,200 करोड़ रुपए के लिए उसके लिए उसका अलाइनमेंट तय करते हुए तय किया कि 15,200 करोड़ रुपए में यह एक्सप्रेसवे बनेगा। मार्च 17 में सरकार बदल गई।

हार बना करके टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दिए। 2018 में जब हमारे पास लैंड आ गई, लगभग 90% लैंड आ गई, टेंडर हुए, टेंडर के बाद ये हुआ कि अब इसको काम शुरू हो। हमने कहा भी ठीक है काम शुरू होगा, भाई बताओ कितने का टेंडर, कितने का खुला है? मुझे बताया गया कि साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले कितने का था? कहा 15,200 करोड़। मैंने कहा 2 साल के बाद कॉस्ट एक्सलेशन का कोई मुद्दा आया नहीं क्या? कहा नहीं साहब, कोई भी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है लोगों ने। मैंने कहा यार देखो ये कॉन्ट्रेक्टर इतने ज़्यादा जो है मेहरबान क्यों है हम लोगों पे कि 2 साल के बाद भी इनका दाम नहीं बढ़ा है। मैंने कहा ये काम करो इसको कैंसिल कर दो और एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाओ। हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई। मित्रों जब इस बार एक साथ मंगाई गई और उसके बाद देखा तो ये मात्र जो 15,200 करोड़ का टेंडर हुआ था वह चल गया इस बार 11,800 करोड़ रुपये में। और उस एक्सप्रेस वे को जो 341 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है, जिसे समाजवादी पार्टी 340 किलोमीटर बनाना चाहती थी, हमने 341 किलोमीटर बनाया। वे 110 मीटर चौड़ा बनाना चाहते थे, हमने उसको 120 मीटर चौड़ा बनाया और उसको मात्र 11,800 करोड़ रुपए में। वही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। एक अन्य उदाहरण इनकी डकैती का मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है यूपी की एक्साइज पॉलिसी का। 2017 में यूपी के अंदर एक्साइज ड्यूटी जो आती थी वह मात्र आती थी 12,000 करोड़ की, और 12,000 करोड़ रुपया ये मिलता था, हाफ करके मिलता था ये भी। हमने पूरी पॉलिसी चेंज की। मैं जानता था ये सब माफिया जकड़े हुए हैं सत्ता को, पूरे उसको हम लोगों ने किया। मैं मानता था बहुत कठिन था मेरे लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन था। सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, हम लोगों ने तब भी उसको लागू कराया। और करवाने के बाद यूपी की आमदनी क्या है इस समय, एक्साइज से यूपी को मिलता है इस समय 63,000 करोड़ रुपये। 12,000 करोड़ से आप अनुमान करिए 5 गुना से अधिक एक्साइज ड्यूटी यूपी को आज के दिन पे प्राप्त हो रही है। ये पैसा किसका था? किसी गरीब का, भूख से मरने वाले उस गरीब का पैसा ये समाजवादी डकार जाते थे। किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी वृद्धजन की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा था, वह पैसा जाता उसको ये लोग किस रूप में डकार जाते थे और कैसे डकैती डालते थे उसके उदाहरण है। और यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो, तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्यौहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे
जो लोग रामनवमी की शोभा

0: Moving on, the Ram Mandir donation theft case that has entered a decisive phase with the investigation gathering pace and the political battle turning sharper. In a fresh attack on the opposition, UP Chief Minister Yogi Adityanath defended his government's handling of the case, saying an SIT has already been constituted and the accused arrested. He accused previous governments of insulting Hindu faith and claimed that those who once attacked Aastha are now crying over Chanda Chori. As the political slugfest escalates, the investigation is also entering a critical stage. All eyes are now on the special investigation team, which is expected to submit its final report today. Meanwhile, India Today has learned that the SIT is likely to fix responsibility for supervisory and administrative lapses, examine whether standard operating procedures were followed, establish the chain of accountability, and recommend a complete overhaul of the temple's donation management and monitoring system. The financial investigation has also widened. Police have sought the Income Tax Department's assistance to trace the alleged money trail, with nearly 50 bank accounts, including investments and accounts linked to relatives, now under the scanner.
1: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है, और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो छह लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है?
2: जो पब्लिक डोमेन में जो बात आ रही है, किस तरह से घोटाले हुए, जमीन किस तरह से खरीदी गई, किस तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का और इनके जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिस तरह से उसमें लगे हुए थे, 50 चीजें बाहर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसे भी जिम्मेदारी बनती है, और वैसे भी क्योंकि उनके आदेश पे ये बनाया गया था, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें तहकीकात करें और जो भी कल्प्रिट इसमें है उनको सजा दें। अब उन्होंने मांगा है तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदेश दिया गया था राम मंदिर का निर्माण करना, लेकिन सरकार ही खुद जो है इसमें चोरी चकारी करने लग गई है, इसका खुलासा होना चाहिए।
3: पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों का भरोसा फिर से राम मंदिर में और राम मंदिर के ट्रस्ट में डालने के लिए तब होगा जब सारे ट्रस्टीज को बर्खास्त कर जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, ना कि वो जो आरएसएस बीजेपी या वीएचपी भक्त हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देकर इतना भव्य राम मंदिर बनाया है, उसके अगर प्रांगण में चोरी हो जाए तो उसका ठेस सारे सनातनियों को पहुंचती है। वो सर राम भक्त और जो लोग राम भगवान पे विश्वास रखते हैं, धर्म पर विश्वास रखते हैं, उसके साथ सीधा सीधा चोट है। तो उसका भरपाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और वो लोग जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे उनकी जिम्मेदारी है।
4: कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो एक रुपया का हो चाहे एक करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार से आप पार्टी, ये लगातार एक समाज में हिंदुओं के वो जहर घोल रहा है। क्यों? वो डर चुके हैं, इसलिए डर चुके हैं कि हिंदू एक हो चुका है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारी जाति पाति को भूलकर सब सनातनी एक हो गए। इससे उनको दर्द हुआ, तो अब कोई मौका नहीं मिला तो क्या करें, तो राम मंदिर चंदा चोरी।
0: Meanwhile, Kakoli Ghosh Dasidar, who leads the rebel TMC MPs, also asserted that they will support the delimitation bill.
1: के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे, लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में, हम कहते थे भाई देखो सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया, शाम के समय अगर देर शाम हो गई जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया। आज मैं मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं, उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। 3 घंटे लगते थे मेरठ से दिल्ली पहुंचने में, आज मात्र 40 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, रैपिड रेल बन चुकी है। देश की पहली इनलैंड वाटरवे दिल्ली हल्दिया के बीच में, ये यूपी के आपके वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित हो चुकी है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है। यूपी में 2017 के पहले कुछ विद्युत की कुल आपूर्ति यूपी के अंदर कुल 15,000 से 16,000 मेगावाट पीक आवर में होती थी और आज पीक आवर में यह खपत हुई है लगभग 35,000 से 35,000 मेगावाट। ये यूपी की नई स्थिति है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को औद्योगिकीकरण का मॉडल दिखाई नहीं देता है, यानी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने बनाई है। इसके माध्यम से जो निवेश हुआ है, मुझे याद है 2017 में जब सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद मेरे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापन और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा था हम कोई इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आपका टारगेट क्या है, उन्होंने कहा साहब 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा पहले नाम बदल दो भाई, मुझे देखे। मैंने कहा भी देखो ग्लोबल शब्द आपने रखा है और टारगेट है 20,000 करोड़ का, तो 20,000 करोड़ तो एक जिले का होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट रखो, ये ग्लोबल नहीं, ग्लोबल के लिए आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, मैंने कहा 6 महीने हुए हैं ना अभी, कुछ तो बदला होगा। उन्होंने कहा साहब समय लगेगा, अभी विश्वास बहाल करने में समय लगेगा, हम जिससे भी बात करते हैं वो हां तो कहता है लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं होता है। मैंने कहा मेहनत करो, पॉलिसीज बनाओ, इन्वेस्टर समिट के पहले हमारी कुछ पॉलिसीज आनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होगा, अनावश्यक विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा एक्सपर्ट की राय लीजिए, पॉलिसी तैयार करो, पिक एंड चूज नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज है, 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए 50 लाख। जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आने को तैयार था, आज 50 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर लिया है। 7.5 लाख करोड़ हमारे पास तैयार है, उसके लिए कोई तिथि तय करते हुए हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये है नया यूपी।
0: Across to my colleague Simar Chawla now joining us live on the broadcast. Simar, UP Chief Minister Yogi Adityanath projecting a very promising future for the state of Uttar Pradesh. Not only has he assured that the perpetrators in the Chanda Chori controversy will be punished, but also taking on those who have targeted the temple and the religion at large in the name of Chanda Chori.
5: Well, indeed, the war of words have been, you know, coming ever since this Chanda Chori issue has come out in the open. We have seen first how Akhilesh Yadav, the prominent face of the opposition in the UP elections, which is almost next year, one of the biggest elections. Now, he had, in fact, attacked the government regarding this very particular matter. On the other hand, CM Yogi Adityanath have been defending the actions of the of his government regarding this very particular issue. In his recent statements, he has said that his government has done everything which should have been done in this very particular matter. Whether it be the arresting of the all 8 accused in this very particular case, however, they were all related to the Ram Mandir Trust, then to the government, in no time registered the FIR, arrested all these 8 accused. Also, the SIT gave its preliminary report on which the FIR was registered. Now, what we are expecting is that SIT is going to conclude its investigation and will submit its final report to the government, after which we expect some of the actions to be taken. So the government have been, in fact, defending their action in this very particular matter, saying that everything was done in this very particular matter, which should have been done by the law. Right. Also, CM Yogi Adityanath attacked Samajwadi Party, saying that the people who were involved in attacking the faith of the people, right, the previous government was involved in attacking the faith. Now, they are the one who are, in fact, asking for the judgment in this very particular case. So all the war awards have been going on from both the parties. Now it remains to be seen that what will be the investigation that will be done in this part of the case.
0: All right, Simar. Many thanks for getting us those details. And well, a British city council that has sparked row after deciding to sell a complex housing Peterborough's only Hindu temple to a Muslim organization, which plans to redevelop it into a mosque and Islamic center. At the center of the dispute is the New England complex in Peterborough, where Bharat Hindu Samaj has operated a temple for nearly 4 decades. The city council decided in February to sell the site to the UK Islamic Mission, which plans to redevelop it into Masjid Khadija, a mosque and Islamic center, despite there being multiple mosques in the vicinity. Reportedly, Bharat Hindu Samaj has been negotiating with the council for a decade to acquire the site. However, when bids were invited, the UK Islamic Mission offered around 18 crore rupees for the complex. Since Bharat Hindu Samaj offered only 11.5 crore rupees, the Peterborough City Council ultimately selected the higher bid.
6: There are reports that the City Council of Peterborough want to give this land of Ram Temple to a mosque, to build a mosque there. Yeah. How is it possible? And, what prompted the City Council to give this land to a mosque?
7: So, that's a good question. We didn't know it's a mosque. So, the bidding happened. So, the way it happened was... Peterborough City Council on 2025 March told us that we can buy the property, and we put an offer in place for 1.3 million. We didn't get any response from them until September 2025. All we came to know was, well, it's going to the best and final offer, and now we have to put a bid. Once we put a bid, it was named as bidder A and bidder B. For the longest time, we didn't knew it's a mosque, but you're asking me why and how somebody can build a mosque there. I don't think I'm the right person to answer it. There are 19 other mosques in the city. There are about more than 150 churches. This is the only Hindu temple in the 50 kilometers of radius. So I would imagine this question needs to be asked to the Peterborough City Council. that what made them displace the only Hindu temple and give it to another faith that has 19 other places to go to.
0: Time now for a short commercial break. On the other side, our special segment In the Club, where you get to watch all that is making news in the world of entertainment. Do stay tuned to India Today.
8: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
11: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
12: Double your money from any random group.
13: Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
14: Well said.
13: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI ID.
15: Samajhkar, investikar.
16: NSE dwara niveshakon ke hit mein jari.
17: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
18: सोच बदलो और बैंक भी.

0: this building in Noida, which has caught fire allegedly because of a spark in a scooty that was electric scooty that was parked in electric bike, I beg your pardon, that was parked in this particular building. Himanshu Mishra is joining me live on this story. Himanshu, what more can you tell us about this fire? All right, we seem to have lost the connection with Himanshu. We'll just get that back for you. But on your screens right now, viewers, are the visuals from this horrific fire and the rescue operation that's going on. As you can see, people are still being taken out from this particular building, which is on fire. About 60 families, 50 to 60 families live in this building that is in Mamura village in Noida. Now, this obviously seems to be another example of how unauthorized construction and bad planning is risking lives of people in Delhi NCR. And in fact, across the country, we're seeing repeated such incidents where unauthorized buildings are exposed wires cause serious trouble. Himanshu Mishra is back with us. Himanshu, kya aur bata sakte hain aap hame Mamura gaon mein jo ye aagzani ki ghatna hui hai uske bare mein kya pata lag raha hai, kis wajah se aag lagi aur kitne logon ko rescue kiya gaya hai?
1: देखिए, चूंकि इस वक्त ठीक आप स्पॉट पे देखिए, ये सामने के आप देख सकते हैं जो विजुअल है जहां पर ये घटना हुई बताया जा रहा है। ये देखिए, सबसे पहले ग्राउंड प्लस फोर, अगर ऊपर आप देखेंगे तो ग्राउंड प्लस फोर है और ये इलाका काफी कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो मकान है करीब है, गलियां भी पतली हैं, इसलिए यहाँ पर पहुंचने में भी टाइम लगी। हालांकि 7 फायर टेंडर पहुंचे, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पहुंचे, तकरीबन 50 फैमिली इस पूरी बिल्डिंग में। अगर आप ऊपर देखेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, यानी आप ऊपर देखिए छोटे छोटे यहाँ पे फ्लैट्स हैं। तो इसमें से रेस्क्यू करना था सबको, क्योंकि एंट्री आप देखिए, एक एंट्री यहाँ पर फ्रंट पे है लेकिन साथ साथ एक एंट्री बैक गेट पे भी है, तो इसकी वजह से एंट्री में रेस्क्यू करने में दिक्कत नहीं आई। नीचे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी थी जिसकी बैटरी चार्ज पर लगी हुई, वहीं से स्पार्क हुआ है ये बताया जा रहा है। और वहीं से स्पार्क होने की जानकारी मिलने पर जो स्पार्क हुआ और आसपास जो पेट्रोल की और भी गाड़ियां, चूंकि नीचे है वो पार्किंग का इलाका है, तो वहां पर दूसरी गाड़ियां थी उसमें आग लगा और बहुत तेजी से जो पूरा ग्राउंड फ्लोर का जो ये इलाका जहां पे आपको, चूंकि यहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और तमाम जो फायर कर्मी है वो लोग यहाँ पर मौजूद है, पूरे ग्राउंड फ्लोर के इलाके में आग बड़ी तेजी से फैली और जो लोग थे उनको साथ साथ रेस्क्यू किया गया, लेकिन दो व्यक्तियों की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, एम्बुलेंस बुलाया गया, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां पर एक लेडी और एक जेंट्स दोनों को डेड डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो तमाम बाकी लोग थे वो पूरी तरीके से ठीक है। बताया जा रहा है कि शायद जो मौत की वजह है वो अत्यधिक धुएं में वो फंस गए थे, बहुत ज्यादा धुआं उन्होंने इनहेल कर लिया था, कि चूंकि जहां पर गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियों की वजह से धुआं बहुत ज्यादा हुआ था। और ये जो आप इलाका अगर आप देखें, ये ग्राउंड फ्लोर का जो कंडीशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलने की जगह नहीं है, और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट अगर आप इसको देखें तो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है और आगे ही यहाँ पर आग लगी हुई थी। दूसरी तरफ भी अगर आप ये देखें तो यहाँ पे गेट के पास कुछ इलेक्ट्रिक जेनसेट टाइप का है और इलेक्ट्रिक जेनसेट टाइप का है।
0: तो हिमांशु एक बात बताइए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, हिमांशु माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये कोई क्या कोई वायरिंग एक्सपोज थी या स्पार्किंग स्कूटी में हुई है? क्योंकि ये जिस तरह से आप बता रहे थे कि तंग गलियां हैं, चार चार माले के बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एक्सपोज वायरिंग का मामला है? क्योंकि हम कई बारी ये इस तरह के मामले देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में।
1: अब देखिए यहाँ की जो कंडीशन है, सबसे पहले बताओ अगर इस मकान के बारे में, तो ग्राउंड प्लस फोर है, ग्राउंड पे पूरी पार्किंग है, जनरेटर वगैरह ये रखे हुए हैं और जो तमाम जो स्कूटी स्कूटर हैं वो यहीं पर रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि आग जो है वो जो एक बैटरी चार्ज पर लगी हुई थी इलेक्ट्रिक वाहन की, और वहीं से इस पार्क होने की जो आशंका है ये फिलहाल जताई जा रही है कि वहीं पर जो है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अस दिस इंफॉर्मेशन। एज हिमांशु वाज सेइंग, एक्सपोज्ड जनरेटर्स एंड एक्सपोज्ड वायरिंग प्लस द स्पार्क फ्रॉम ए ई व्हीकल व्हिच वाज बीइंग चार्ज्ड, क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड अबाउट व्हाट caused this fire and how, where are we when it comes to safety of our buildings. But moving on to more breaking news that's coming in. Karnataka pushes ahead with Birdi Township. Final land acquisition notification has now been issued for four more villages amid farmer protests. Karnataka government has issued final land acquisition notification for four more villages under the Birdi Township project. This is to acquire nearly 4,000 acres of land across four villages for the proposed Birdi Township project. Despite, remember viewers, sustained protests from farmers. Remember, these farmers have been protesting for almost 500 days now, and just yesterday we saw farmers attacking the town survey team as well. And now this notification that has come from the state, which covers Banigere, Golarapalaya, Aral Sandra and Hosur villages. This move comes days after officials conducting a land survey were allegedly attacked by the protesting farmers. Let's listen.
2: The township was being brought by Mr. H.D. Kumaraswamy. He was the chief minister. He started this acquisition. He notified it. He wanted this project to give to the DLF. So DLF gave about 400 crores. Then they took back the money. Mr. Kumaraswamy, when he was the chief minister, and Mr. Yediyurappa was the deputy chief minister, he kept the land under the red zone and a permanent agriculture zone. He said that no land can be sold to anyone or developed. That the order he made. I have not made any of this. This is not my project. This is a project of Mr. H.D. Kumaraswamy and BJP. Both of them wanted this township. They wanted 5-6 townships. 9,000 acres.
0: And it's time now to go over to my colleague Abha Bakaya, who's bringing us all the news of the markets today in our special Business Today bulletin. Over to you, Abha.
3: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
4: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
5: Well said.
4: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
6: Presented by National Stock Exchange.
7: ICFA University, building tomorrow's leaders today.

0: 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
8: वाओ, सो यू यूज दिस ट्रेडिंग ऐप टू?
9: Yes, because it promises guaranteed returns.
8: Guaranteed returns. Your trading app is authentic, right? Here's the catch. First, they promise guaranteed high returns with a grin. Then trick you to download a fake app and pull you in.
10: Vincent! Vincent!
8: SEBI and NSE advice. Download apps only from the verified apps list on SEBI's investor site.
11: Search good. So much good.
12: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: मुझे कहने में कोई संकोच नहीं।
1: 2014 के पहले भी एक प्रकार की डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों मिलकर के काम कर रहे थे लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था, आम जन में विश्वास नहीं था, क्योंकि आम जन मानता था इन दोनों की जो स्थिति है वह है एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। दोनों की स्थिति कमोवेश यही थी। ये लोग आज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को इन्होंने 2014 के पहले स्वयं अंगीकार किया होता तो ये स्वयं हाशिए पर नहीं गए होते।

0: Welcome back. The politics over Sri Ram Mandir Chanda Chori has escalated. A massive confrontation between the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Samajwadi Party. Remember, Uttar Pradesh will see elections in 2027. The Yogi Adityanath government in the state says they've arrested the accused in this case. There is an investigation that is underway. The SIT probe will reveal more details and further action will be taken. But the opposition is demanding greater transparency and accountability. So at Panchayat Aaj Tak Uttar Pradesh, UP Chief Minister Yogi Adityanath and Deputy Chief Minister Brijesh Pathak, other BJP leaders and of course opposition voices, they laid bare their positions on the controversy. We get you more in this report.
1: The alleged theft of Ram Mandir donations has now moved beyond an investigation, becoming a major political flashpoint in Uttar Pradesh. At Panchayat Aaj Tak, the biggest names, the sharpest questions and the biggest political flashpoints came face to face. At the conclave, Chief Minister Yogi Adityanath defended his government's action, highlighting the formation of an SIT and the arrest of accused persons.
2: SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की, जो छह लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई.
1: But the political battle intensified as Chief Minister Yogi launched a direct attack on opposition, accusing earlier governments of disrespecting Hindu Astha time and again and questioning their stand on Lord Ram.
2: Jin logon ne har sthiti mein Ram Mandir ka nirman na ho, us mudde par har prakar se badha aur barrier lagane ke prayas ki, apne adhivakta khade ki Ram Mandir ke virodh mein, aaj ve Astha ki baat kar rahe hain.
1: Deputy Chief Minister Brijesh Pathak reinforced the government's position, saying accountability will be fixed and no guilty person will be spared.
3: जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी, और कोई बचेगा नहीं, और भविष्य में न हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है, और ये ट्रस्ट का काम है. ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है, और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है.
1: The Uttar Pradesh BJP chief said devotees' sentiments have been heard and assured that no one, big or small, will be protected.
4: हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है, और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो, और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे.
1: बीजेपी ally अनुप्रिया पटेल echoed the same message that the guilty will face strict action.
5: सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दिशा में एक SIT भी गठित हुई है, SIT ने अपना काम किया है, अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी, और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा.
1: But the opposition sees the issue differently. Leader of opposition in Uttar Pradesh Assembly, Mata Prasad Pandey, questioned the government over transparency and accountability.
6: 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है, आप नहीं मानते?
7: हमने हम बाप को बताने रूप बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है. भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं, उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया. अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहां जा रहा है.
8: जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है, और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने.
1: The Congress also targeted the BJP, questioning whether all those linked to the case, including individuals associated with the RSS and BJP, would be subjected to investigation.
9: Chadhawa chori pe kya bolegi Bharatiya Janata Party? Chanda chori par kya bolegi Bharatiya Janata Party? Inke log shamil hain usme. Bhagwan Ram ke naam par aaye aur Bhagwan Ram ke naam par ye jayenge. Aapne chote logon ko bhej diya, Tillu Yadav, kon kon aur kisko kisko bhej diya aapne, Mishra ji ko. अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे
1: The Ram Mandir Chadhawa controversy has now become a test of accountability and political credibility. With the SIT probe underway, the issue is likely to remain a key talking point as Uttar Pradesh heads towards the crucial 2027 electoral battle. Bureau Report, India Today.

0: मंदिर मैंडेट एंड महासंग्राम। चढ़ावा चोरी यूपीज न्यू पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। पंचायत आज तक यूपीज पावर प्लेयर्स यूनाइट। आस्था एक्यूजेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। बिग वॉइसेस बोल्ड व्यूज। योगी वर्सेस ऑपोजिशन ओवर राम मंदिर राव।
1: श्री राम के नाम पर इतना चंदा चोरी की है, मैं समझता हूँ भगवान प्रभु श्री राम इतनी बड़ी सजा देंगे भाजपा के लोगों को, शायद इस बात की उन्होंने कल्पना भी नहीं की।
2: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं।
0: पंचायत आज तक सेट्स यूपी पोल एजेंडा।
2: अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी के ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे। नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं, कितना हास्यास्पद है। वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है। और इसीलिए आज प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे। और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। यूपी जैसे राज्य के बारे में मेरा मानना है, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कानून का राज स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे दीजिए, अपने आप सुशासन के लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में इस कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यूपी मॉडल को सुरक्षा के इस मायने में लोगों ने अडॉप्ट किया। यूपी का नाम वहीं पे नहीं आ रहा है। पहले एक मान्यता थी, मैं दिल्ली में अक्सर देखता था, राज्यों की सूची आती थी, राज्यों में किस योजना में कौन राज्य टॉप 3 में है, कौन कौन राज्य है टॉप 3 में। यूपी का कहीं पता नहीं होता था। हम ढूंढते थे यूपी कहां है, ओह यूपी तो बॉटम 3 में है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उस समय सरकारों की मानसिकता ऐसी थी। आज मैं कह सकता हूं, देश के अंदर कोई भी स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, किसी भी स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 100 से ज्यादा वेलफेयर की स्कीम निकली है। इन स्कीम में आज के अंदर आप देखेंगे यूपी हर एक स्कीम में टॉप 2 में यूपी का नाम आता है, हर एक स्कीम में यूपी का नाम आता है। और यूपी में स्कीम सफल होने का मतलब स्कीम अपने आप में देश के अंदर सफल हो गई, दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई। आज यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, 2017 के पहले हम लोग भी इस बात को बोलते थे और सोचते थे, मजाक में हम लोग भी कह देते थे। लोग कहते थे यूपी का बॉर्डर कहां से शुरू हो रहा है इस राज्य में, हम कहते थे भाई देखो सड़क पे चलना है, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए मान लेना यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। शाम के समय अगर देर शाम हो गई
जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, मान लेना यूपी का बॉर्डर शुरू हो गया,

0: आज मैं मानसक मानता हूं यूपी के अंदर सड़कें देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में अच्छी मिलेंगी, सबसे अच्छी सड़कें यूपी की मिलेंगी। भारत की 60% एक्सप्रेस नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है आज के दिन पे। सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी के से जुड़े हुए एयरपोर्ट यूपी के पास हैं। आज के दिन पे हम 17 एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। जब मैं आया था तब यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 17 संचालित हैं। उनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी इस एयरपोर्ट में हमारे पास जो लैंड है वह है लगभग 14,000 एकड़ लैंड। भारत के अंदर किसी एयरपोर्ट के पास इतनी लैंड नहीं है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, आज 7 सिटी है हमारे पास जहां पे मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। ये नया यूपी है, 17 के पहले अगर समाजवादी विकास का मॉडल होता ना तो यूपी कब का डूब गया होता। आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूँ यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्यौहार होगा।
1: लेकिन मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों से, 1990 से लेके आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया है क्या उसका कोई भी हिसाब किताब दोगे? राम मंदिर के जो जगह है, जिस जगह पे मंदिर बनाए, निर्मोही अखाड़े के पास उसका उसके पक्ष, निर्मोही अखाड़े के पक्ष में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और उसी निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने जो 90 के दशक में लोगों ने दिया था, सहयोग दिया था भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ, वो चोरी हुआ। और ये जो चंदा चोरी खुली है ये तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। आप अगर समय देंगे तो मैं डेट बाई डेट, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बयान दिया, जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है। एक ही दिन में जमीन की कीमत आप सोचिए 12-12 गुने बढ़ी है। और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने। कांग्रेस पार्टी के सर्वमान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सर्वमान नेता और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, जिस दिन मिलकर कोई फैसला लेंगे हम उस फैसले को अंतिम मानेंगे। क्या इमरान मसूद या उनको लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है समाजवादी पार्टी से वार्ता करने का, नेगोशिएशन करने का? और नहीं किया है तो इस तरह की बयानबाजियों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिवस पर कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी कही और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने लिखा, मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस ने रिजल्ट लाके दिखाया है। चाहे भगवान प्रभु राम श्री राम का मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी एक उपलब्धि के तौर पर पूरे देश के अंदर ये कहती घूम रही थी कि 400 पार भी करेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भी बदलेंगे और न जाने क्या क्या दावे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने 43 सीटें जीत के बीजेपी की दिल्ली की सरकार को बैसाखी पे लाने का काम किया था। ये ताकत है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में ये ताकत है आदरणीय अखिलेश यादव जी की। और 43 हम जीते थे, 5 काउंटिंग में हराए गए थे। और शायद उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास होता कि इतना कम अंतर बचा है तो मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बदल देता, ये हैसियत उत्तर प्रदेश की है। लोगों को एहसास नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग चुनाव आते आते उन्हीं को दिखाना शुरू करते हैं। एग्जिट पोल में भी बात करो अगर आपकी, तो शायद 12-14 से ज़्यादा हम लोगों को नहीं दिखाया होगा आपने लोकसभा के चुनाव में। और आप ही ने नहीं, पूरी प्रिंट मीडिया जितने सर्वे टीम थी, कोई भी हमें 12-14 से ऊपर नहीं दिखा रहा था, बल्कि बहुत सारे लोग सिंगल डिजिट में दिखा रहे थे। तब भी हम लोग 43 जीत के आए, 5 काउंटिंग में हराए, जनता को एहसास नहीं हो पाया, नहीं तो जनता के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरकार पलट देती। और मैं समझता हूं हमारा ये वर्तमान इंडिया गठबंधन अपने आप में सक्षम है। और आज मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे इस वीडियो क्लिप को खोलिएगा, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया गठबंधन कम से कम 300 सीटें जीत के आएगा। उत्तर प्रदेश के पीड़ित परिवार को एहसास है, आज मामूली बात है, देश के अंदर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 1-2 को छोड़ के 45 यूनिवर्सिटी में कहीं वीसी नहीं है। हमारे पीड़ित परिवार का ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी बड़े संस्थान हैं, चाहे KGMU से लेके ले लीजिए, लोहिया से लेके, जितने भी संस्थान मानते हैं आप, PGI से लेके, सैफई यूनिवर्सिटी से लेके, BHU से लेके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, AMU से लेके, चले जाइए पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, झांसी से लेके मेरठ तक, मेरठ से लेके गोरखपुर तक, कहीं किसी भी जगह PDA परिवार का कोई नहीं है। आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देख लीजिए, DGP से लेके कप्तान तक देख लीजिए, सर्किल ऑफिसर तक देख लीजिए, और चीफ सेक्रेटरी से लेके आप SDM और तहसीलदार तक चले जाइए, कहीं कप्तान, कहीं DM, कहीं IG, कहीं DIG, कहीं कमिश्नर, कहीं भी इम्पोर्टेंट विभागों का प्रमुख सचिव, एक भी PDA परिवार का नहीं है। ये लोग जो आते हैं PDA की बातें करते हैं, इनकी ये क्षमता नहीं है कि यहाँ के मुख्यमंत्री से PDA परिवार के हक की बात कर सकें, ये है इनकी क्षमता। ऐसे पूरा PDA परिवार इस बार जागा हुआ है, PDA परिवार को एहसास इस बात का है 69,000 शिक्षकों में कैसे अन्याय हुआ है, कैसे आरक्षण की लूट हुई है। और केवल 69,000 शिक्षकों में ही नहीं, हर भर्ती में आरक्षण की लूट हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमान भाइयों को, बैकवर्डों को, सबको एहसास है इस बात का।
2: इस सेशन का टाइटल है पंडित शंख बजाएगा। इस नारे को पूरा करिए आप अपने अंदाज में।
3: उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। और जहां तक आपने ब्राह्मणों की चर्चा की, हमारी मूल पार्टी है, यही हमारे संस्कारों में शामिल है, और हम सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ।
2: 2024 के परिणाम के बाद 2027 में क्या बदल जाएगा, क्योंकि बीच में और अभी कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जो सबसे बड़े राजनीतिक विषय बन गया है पूरे प्रदेश में, वो है राम मंदिर चंदा चोरी। तो इसके वजह से क्या नैरेटिव चेंज होगा?
3: कोई नैरेटिव चेंज नहीं होगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी, और कोई बचेगा नहीं। और भविष्य में ना हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है, और ये ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है, और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है।
2: लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है, विपक्ष का ये आरोप है कि बड़ी मछलियों को आप बचा रहे हैं।
3: आप अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए,
2: उन्होंने अभी बोला,
3: अपोजिशन से केवल एक बात पूछ लीजिए मेरा, देखिए सनातन संस्कृत पर उंगली उठाना इन्हीं लोगों का काम है, आज से काम नहीं है, हजारों सालों से। सब लोग मुगल हो जाएं, सारे लोग जो है मुसलमान हो जाएं, कितनी बार हमारी संस्कृत पर हमले हुए, कोई कम हुआ है? अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बन जाए, बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद बन जाए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद बन जाए, ये आज की बात है? हमेशा हमले हुए हैं। इन लोगों से पूछिए जो जालीदार टोपी लगा के बैठ के गए हैं, कि क्या कभी धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था? जो चंदा इकट्ठा हुआ था, अखबारों में आए थे, वो चंदा का हिसाब मांगे जरा हिम्मत है तो? उसका भी हिसाब मांगे, जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में देश में उसकी फंडिंग कहां से हो रही विदेश से, उसका हिसाब मांगे। हम हिसाब देने को तैयार हैं, हम जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनसे तो पूछो, केवल हमारे ऊपर उंगली उठाओगे? हमारा राम खराब है और तुम्हारे बड़े मियां अच्छे हैं, ये कहां से चलेगा?
2: लेकिन जब आपसे सवाल उठ रहा है ब्रजेश पाठक जी, लेकिन सवाल अगर आपसे उठ रहा है तो आप पूरे पुराने बातें क्यों गिना रहे हैं?
3: पुरानी बात क्यों नहीं? देखिए, जहां कैश है, जहां रुपया नगद है, जहां रुपया नगद है गड़बड़ी की संभावना है कि नहीं, बताना जरा पीछे आगे तक। और गड़बड़ी पकड़ी गई, हम कार्रवाई किए हैं। तुम बताओ कितने मौलाना पर FIR दर्ज कराए हो? समाजवादी पार्टी को तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। 2012 में पहली बार सरकार बनी, आतंकवादियों पर मुकदमे वापस क्यों लिए? जवाब दे समाजवादी पार्टी। अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ, बनारस में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ, आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण करेंगे और सनातन संस्कृत की बात करेंगे? क्या बात करते हैं आप? डिबेट कराइए, सामने आमने बैठाइए, एकदम बात कहने लायक हक इनको नहीं है, इनको प्रदेश से देश से माफी मांगनी है। आज तक राम मंदिर का आप दर्शन करने नहीं गए, हिम्मत होती तो जाते, क्योंकि आपके पूर्व की सरकारों ने गोलियां चलवाई थी, कैसे जाओगे? तुम्हारे हाथ तो खून से सने हुए हैं।
2: वो कह रहे हैं कि आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं।
3: आप हो,
2: उनसे पूछ पार्टी सनातन के ठेकेदार नहीं,
3: हम ठेकेदार नहीं है। आप हो, आप आगे आ जाओ, बनवाओ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, आप आगे आओ, हमने उतार देते हैं। चलो आगे बयान दो कि भगवान कृष्ण हमारे हैं, हम मंदिर बनाएंगे, हम दीवार तोड़ेंगे, दे बयान, हिम्मत है तो। ये केवल कुछ नहीं करेंगे, ये सत्ता सुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं, इनका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। PDA की बात करते हैं, जब कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का आपने देखा है समाजवादी पार्टी का? आप लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री बोर्ड समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भैया है। उसका पदाधिकारी कौन है? भाभी है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव कौन है? चाचा है। फिर दूसरा भतीजा है। अरे जो जन्म लेने वाला है उसका भी पोस्ट तय हो जाता है समाजवादी पार्टी में। क्या बात करते हैं आप? रामन और लोहिया जी कहीं स्वर्ग में बैठ करके आंसू बहा रहे होंगे कि हमारा तो इन लोगों ने पूरा विचारधारा को किनारे लगा दिया। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी थे कि नहीं थे? रामायण मेला लगवाते थे। कितना रामायण मेला लगवाया इन्होंने, बताएं जरा हमको। लोहिया जी के बारे में कुछ सोचे कि रामायण मेला लगाते थे, सब लोग जाते थे, भगवान राम की चर्चा करते थे। मारे डर के भगवान राम की चर्चा नहीं कर रहे। ये तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ मंदिर में, ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन करें कब जाएंगे। कह तो जाएं, टोपी उतारे, जाएं दर्शन करें। ये सब पूंजीवादी हैं, माल बटोरू हैं, सत्ता पाएंगे तो घर भर में बांटेंगे और नाम करेंगे PDA का। ये केवल जैसे कोई क्या होता है, जैसे कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो गई, सड़क बनाने में कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाती है, समझ गए ना आप? ब्लैकलिस्ट हो गई तो माल वही है, नाम बदल दिया। समाजवादी पार्टी के नाम से वोट क्यों नहीं मांगते? हिम्मत है तो मांगे। समाजवादी पार्टी को लोग जमानत जब्त कराने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग, इनकी गुंडई अराजकता से उब चुके हैं।
2: वो कह रहे हैं कि वो PDA पे विश्वास करते हैं और आप
3: एक काम करिए,
2: एक मिनट, वो और आप भाजपा बिरादरी की राजनीति कर रही है।
3: आप बताइए कौन सी बिरादरी है? और समाजवादी पार्टी के जरा पार्लियामेंट्री बोर्ड उठा लीजिए, उनका जरा फेरिस्त नेताओं को उठा लीजिए और हमारी पार्टी के नेताओं की लिस्ट उठा लीजिए, आपको तय हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, आप तय करो, हम तो आपसे कहते हैं तय करो, आप जज हो जाओ। लेकिन समाजवादी पार्टी का हाल ये है, मन मा राम बगल मा छुरी, गांव कहावत क्या कहते हैं, मन मा राम बगल में मिल जाएंगे तो पीठे मारेंगे, सब मंदिर गिरा देंगे। ये मौलाना लोगों के पक्षधर हैं, क्यों कहे नहीं कहते हैं कि जहां जहां मदरसों में अराजकता हो रही है हम फंडिंग की जांच कराएंगे।
2: ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है समाजवादी पार्टी,
3: कुछ नहीं निकलने वाला है। ये सब ढपोल संघ हैं, इनकी दुकान बंद हो चुकी है, ये आखिरी लौ इनकी जल रही, दिया जो है फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं, आखिरी इनके पास कुछ है नहीं। इस चुनाव को हारने के बाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की दुकान ठप हो जाएगी, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं।
2: 300 सीट का दावा करके गए हैं यहाँ से।
3: अरे भाई, आपको रोका किसी ने? जो नया दल आज रजिस्ट्रेशन कराया वो भी दावा करे? दावा करने को रोका है? कोई टैक्स ही पर है? दावा पे कोई टैक्स है? दावा पे कोई टैक्स नहीं है, कोई करे?
2: लेकिन ब्रजेश पाठक जी वो सरकार में रहे हैं और 2024
3: के ढेर सारे, 2024 में तो कांग्रेस भी रही है,
2: नहीं 2024
3: सरकार में तो राहुल गांधी भी रहे हैं, उनसे पूछो क्या हालचाल है। रात को नींद नहीं आ रही है कि नानी क्या करके गई, नाना क्या करके गए, हाय भाई, कुछ नहीं है, दुकान ठप है।
2: 2024 का चुनाव,
3: अरे काठ की हांडी एक बार चढ़ती हर बार थोड़ी चढ़ेगी।
2: दूसरे स्टेट में वो प्रभाव नहीं हुआ था, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, बगल के बिहार में नहीं हुआ।
3: आप देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में इन लोगों ने केंद्रित किया कि हम महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया डालेंगे और गुमराह करके वोट हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये लाइन ऑर्डर पर चुनाव होगा। लाइन ऑर्डर पर बोले कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं थे, लाइन ऑर्डर पर बोले कि हम टेंडर लुटवाते नहीं थे, ये कहें कि हम खनिज आइटम बालू और मोरंग लुटवाते नहीं थे, ये कहें कि हर जिले में गुंडे नहीं थे, हर जिले में मिनी सीएम नहीं थे, कहें, हिम्मत है तो कहें।
2: नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों हो रही है? ये अलग अलग मुद्दा है।
3: क्या
2: कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर कार सेवा भी शुरू होगी?
3: अरे भाई, लाइन ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे, और जैसे अयोध्या धाम में प्रभु राम लला का मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में भोले बाबा का कॉरिडोर बन गया, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन गया, तो बिहारी जी क्या उन गलती की है, उनका भी बनना चाहिए, मुरली बजना चाहिए। अब ईश्वर जाने कब बजेगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है, हम लोग केवल निमित्त मात्र है, करने वाला कोई दूसरा है।
2: जो भाजपा का संगठन है वो बहुत मजबूत है, और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ।
3: मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता तो इतनी है कि हर जिले में आप किसी भी मीटिंग में जाइए तो पब्लिक दीवानी रहती है कि हमारे नेता ने दिखाया है लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, दिखाया डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, इनके पास तनख्वाह देख पैसा ना रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने खजाना भर दिया है बगैर टैक्स बढ़ाए।
2: क्योंकि हम लखनऊ में हैं, हाँ। और अभी यूपी की राजनीति गर्म है क्योंकि कुछ महीने में चुनाव होने वाला है, और चुनाव में एक अभी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है। उस चोरी के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, उसके जवाब में आज मुख्यमंत्री ये कह करके गए हैं कि जो आस्था को नकारते थे वो अब आस्था की क्या बात करेंगे।
4: हम लोग आस्था को नहीं नकारते थे, हम लोग आस्थावान वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है जो आस्था के रहते हुए भी जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, जो सनातन को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए थे, वही आज सनातन का झंडा बरदार बने घूम रहे हैं। आप पूछो कि वो सनातनी है क्या, वो तो नाथ संप्रदाय के हैं, और हम लोगों पर आरोप लगाना, ये हम उसका जवाब यहाँ नहीं देंगे, हमने बहुत जवाब दे दिया है। जहाँ तक अयोध्या के मामले में चोरी के मामले की बात है, ये दुर्भाग्य है क्योंकि ये पहले से इन लोगों की आदत न होती ये इस तरह की, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, उनके पास एलआई था, उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, उनको सारी सूचनाएं थी, तो पहले से जानकारी करके उसे रोकने का प्रयास माननीय अगले मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने तो किया नहीं, केवल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हुआ था वो समरसता का सवाल था, एक दूसरे थे जिन्होंने अपने घर में संत थे और वो अंसारी साहब के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती थी, उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया और उनको जो आबतारी कराई, यह सवाल है। वहाँ कहाँ नमाज पढ़ाया, मंदिर गए। अब ये भाजपा निरंतर झूठ बोलने का ठेका ले रही है, रोज झूठ बोल के माहौल क्रिएट करते, लेकिन प्रभु श्री राम इनसे नाराज है।
2: पर आप मानते हैं अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है, और क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी चुनाव में मुद्दा होगा?
4: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावें या ना बनावें, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला, वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसे समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ है।
2: आप मानते हैं?
4: हाँ मानते हैं।
2: लेकिन 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है, आप नहीं मानते?
4: हमने हम बाप को बता दें, रूप बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है, भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं, उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया, जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई, जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमते रहते थे, कहते रहते थे अयोध्या, अयोध्या के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करते थे, उस कोशिश को प्रभु राम श्री राम ने नकार दिया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया। अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहां जा रहा है।
5: यू वॉचिंग इंडिया टुडे टेलीविजन। इंडिया टुडे टेलीविजन स्टूडियो इज सेफ फ्रॉम डेंगू, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
6: ट्यून इन हाउ टू, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
8: Wow, so you use this trading app too?
9: Yes, because it promises guaranteed returns.
8: Guaranteed returns? Your trading app is authentic, right? Here's the catch. First, they promise guaranteed high returns with a grin. Then trick you to download a fake app and pull you in.
10: Vincent!
8: Vincent! SEBI and NSE advice. Download apps only from the verified apps list on SEBI's investor site.
11: So much good. NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU!
13: सोच बदलो और बैंक भी।

0: वेलकम बैक. द पॉलिटिक्स ओवर श्री राम मंदिर चंदा चोरी हैज एस्केलेटेड. अ मैसिव कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड द ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी. रिमेंबर उत्तर प्रदेश विल सी इलेक्शंस इन 2027. द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन द स्टेट सेज देव अरेस्टेड the accused in this case. There is an investigation that is underway. The SIT probe will reveal more details and further action will be taken. But the opposition is demanding greater transparency and accountability. So at Panchayat Aaj Tak Uttar Pradesh, UP Chief Minister Yogi Adityanath and Deputy Chief Minister Brijesh Pathak, other BJP leaders and of course opposition voices, they laid bare their positions on the controversy. We get you more in this report.
1: The alleged theft of Ram Mandir donations has now moved beyond an investigation, becoming a major political flashpoint in Uttar Pradesh. At Panchayat Aaj Tak, the biggest names, the sharpest questions, and the biggest political flashpoints came face to face. At the conclave, Chief Minister Yogi Adityanath defended his government's action, highlighting the formation of an SIT and the arrest of accused persons.
2: SIT ki report aate hi trust ne karwai bhi shuru ki. Jo 6 log visual mein chori karte hue pakde gaye, unki giraftari hui, jo unme sahyog kar rahe the unki giraftari hui, aur giraftari hone ke sath hi नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई.
1: But the political battle intensified as Chief Minister Yogi launched a direct attack on opposition, accusing earlier governments of disrespecting Hindu Aastha time and again and questioning their stand on Lord Ram.
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं.
1: Deputy Chief Minister Brijesh Pathak reinforced the government's position, saying accountability will be fixed and no guilty person will be spared.
3: जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी और कोई बचेगा नहीं. और भविष्य में न हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है. और ये ट्रस्ट का काम है. ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है.
1: The Uttar Pradesh BJP chief said devotee sentiments have been hurt and assured that no one, big or small, will be protected.
4: हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले. उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे.
1: बीजेपी ally अनुप्रिया पटेल echoed the same message that the guilty will face strict action.
5: सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दिशा में एक SIT भी गठित हुई है. SIT ने अपना काम किया है. अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा.
1: But the opposition sees the issue differently. Leader of opposition in Uttar Pradesh Assembly, Mata Prasad Pandey, questioned the government over transparency and accountability.
6: 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है. आप नहीं मानते?
7: हमने हम बाप को बता दें रूप बदला है, हमारा आग्रह बढ़ा है. भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं. उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया. अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहां जा रहा है.
8: जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है. और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने.
1: The Congress also targeted the BJP, questioning whether all those linked to the case, including individuals associated with the RSS and BJP, would be subjected to investigation.
9: Chadhawa chori pe kya bolegi Bharatiya Janata Party? Chanda chori par kya bolegi Bharatiya Janata Party? Inke log shamil hain usme. Bhagwan Ram ke naam par aaye aur Bhagwan Ram ke naam par ye jayenge. Aapne chote logon ko bhej diya Tillu Yadav kon kon aur kisko kisko bhej diya aapne Mishra ji ko. अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे
1: The Ram Mandir Chadhawa controversy has now become a test of accountability and political credibility. With the SIT probe underway, the issue is likely to remain a key talking point as Uttar Pradesh heads towards the crucial 2027 electoral battle. Bureau Report, India Today.

0: Welcome back. The politics over Sri Ram Mandir Chanda Chori has escalated. A massive confrontation between the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Samajwadi Party. Remember, Uttar Pradesh will see elections in 2027. The Yogi Adityanath government in the state says they've arrested the accused in this case. There is an investigation that is underway. The SIT probe will reveal more details and further action will be taken. But the opposition is demanding greater transparency and accountability. So at Panchayat Aaj Tak Uttar Pradesh, UP Chief Minister Yogi Adityanath and Deputy Chief Minister Brijesh Pathak, other BJP leaders and of course opposition voices, they laid bare their positions on the controversy. We get you more in this report.
1: The alleged theft of Ram Mandir donations has now moved beyond an investigation, becoming a major political flashpoint in Uttar Pradesh. At Panchayat Aaj Tak, the biggest names, the sharpest questions and the biggest political flashpoints came face to face. At the conclave, Chief Minister Yogi Adityanath defended his government's action, highlighting the formation of an SIT and the arrest of accused persons.
2: SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की जो छह लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई.
1: But the political battle intensified as Chief Minister Yogi launched a direct attack on opposition, accusing earlier governments of disrespecting Hindu Aastha time and again and questioning their stand on Lord Ram.
2: Jin logon ne har sthiti mein Ram Mandir ka nirman na ho, us mudde par har prakar se badha aur barrier lagane ke prayas ki, apne adhivakta khade ki Ram Mandir ke virodh mein, aaj ve Aastha ki baat kar rahe hain.
1: Deputy Chief Minister Brijesh Pathak reinforced the government's position, saying accountability will be fixed and no guilty person will be spared.
3: जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी, और कोई बचेगा नहीं, और भविष्य में न हो, उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है, और ये ट्रस्ट का काम है. ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है, और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है.
1: The Uttar Pradesh BJP chief said devotees' sentiments have been heard and assured that no one, big or small, will be protected.
4: हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे.
1: बीजेपी ally अनुप्रिया पटेल echoed the same message that the guilty will face strict action.
5: सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दिशा में एक SIT भी गठित हुई है. SIT ने अपना काम किया है. अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी, और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा.
1: But the opposition sees the issue differently. Leader of opposition in Uttar Pradesh Assembly, Mata Prasad Pandey, questioned the government over transparency and accountability.
6: 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है. आप नहीं मानते?
7: हमने हम बाप को बता दें रूप बदला है, हमारा ग्राफ बढ़ा है. भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं. उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया. अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहां जा रहा है.
8: जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है. और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने.
1: The Congress also targeted the BJP, questioning whether all those linked to the case, including individuals associated with the RSS and BJP, would be subjected to investigation.
9: Chadhawa chori pe kya bolegi Bharatiya Janata Party? Chanda chori par kya bolegi Bharatiya Janata Party? Inke log shamil hain usme. Bhagwan Ram ke naam par aaye aur Bhagwan Ram ke naam par ye jayenge. Aapne chote logon ko bhej diya Tillu Yadav kon kon aur kisko kisko bhej diya aapne Mishra ji ko. अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे
1: The Ram Mandir Chadhawa controversy has now become a test of accountability and political credibility. With the SIT probe underway, the issue is likely to remain a key talking point as Uttar Pradesh heads towards the crucial 2027 electoral battle. Bureau Report, India Today.

0: Kashmiris are taking part in this march. At the heart of this movement is the Joint Awami Action Committee. And they have one message for the establishment. This is not Azad Kashmir. This is territory occupied by Pakistan.
1: और उन क्रातादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है।
0: The movement is no longer confined to political activists or local leaders. Women, elderly citizens, traders, students, and even children have joined the march, reflecting the depth of public anger and the scale of participation.
2: मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े हैं? हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आजाद कश्मीर से मेरा ये मुतालबा है कि हमारे मुतालबा फौरन माने जाए। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो।
0: But as the movement gathers momentum, so has the crackdown. Just a day ago, Pakistan security forces opened fire on protesters, with local reports saying at least 8 people were killed. India has condemned the crackdown, saying the unrest is the outcome of years of exploitation and repression by Pakistan in Pakistan-occupied Jammu Kashmir. New Delhi has also called on the international community to take note of Islamabad's brutality in the region.
3: The ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression.
0: Much of the public anger is now directed at Pakistan's military establishment. Field Marshal Asim Munir has emerged as the principal target of the protester slogans. And the criticism is no longer coming only from Pakistan-occupied Kashmir. Even the voices within Pakistan has acknowledged that they are facing a massive challenge on multiple fronts.
4: Pura Baloch ilaqa Pakistan ke ikhtiyar se nikal chuka tha. आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं।
0: Even the voices within Pakistan has acknowledged that they are facing a massive challenge on multiple fronts.
5: पाकिस्तान इस वक्त एक सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा है। एक तो थ्री फ्रंट सिचुएशन है पाकिस्तान जो फेस कर रहा है। क्या है वो थ्री फ्रंट्स? एक तो फ्रंट जाहिर है भारत का, तो अभी भी है ना, कोई गायब तो नहीं हुआ
6: जी।
5: फिर अफगानिस्तान का फ्रंट है, फिर इंटरनल फ्रंट है, बलोचिस्तान, केपी, फिर आजाद कश्मीर। अगर आप आजाद कश्मीर के लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स लूज कर जाते हैं, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की क्या पोजीशन रहेगी ऑक्यूपाइड कश्मीर पे।
0: द स्लोगन्स एकोइंग ऑन द रोड ऑफ मुजफ्फराबाद आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन और गवर्नेंस, दे आर अबाउट आइडेंटिटी, representation and decades of simmering resentment against Pakistan's rule. Bureau Report, India Today.
7: And Pakistan is burning on multiple fronts. For decades, Pakistan claimed that Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was so-called Azad Kashmir or Free Kashmir. But was that the truth? The truth is emerging for all to see now. Those 80,000 plus people who are on the streets, who say they're not getting food, they are being starved. The British used to do that in India when they occupied India. The British did that pre-1947. Pakistanis are doing that right now in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. They're not letting food trucks travel to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. They're not letting water, vegetables, meat, medicines, milk, none of that is being permitted.